वाहेगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांस सुआसा नाल निभाए तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिजे कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजे तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब राखो हो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख शफारे कर आज फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दामा आपदा ते राखे गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो परसन कल जुग होए राखो हो दास पाट की लाज ज्यों जानो हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हों ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो हो काड पव जल फेरिया दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुख टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी
सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु। सतनाम

तनासरी शांत महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाय जियो हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाय जियो गुण गाए बिगसै सदा आनंदिन जा आप साचे पावे अहंकार होमै तज माया सहज नाम समावे आप करता करे सोई आप दे ता पाइए हर जियो कृपा करे ता नाम त्याइए जियो अंदर साचा नेहो पूरे सतगुर जियो हों तिस सेवी दिन रात मैं कदे न विसर जियो कदे न विसारी आन दिन समारी जा नाम लई तां जीवा श्रवणी सुनी तां इहो मन तृपत गुरमुख अमृत पीवा नदर करे तां सतगुर मेले आन दिन बबेक बुद्ध विचरै अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो आन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत वैरागी हालत पालत सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो

बिन नावै को साथ न चाले, पुत्र कलतर माया तोहिया। दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोहिया जियो। कर किरपा लिहो मिलाए, महल हर पाया जियो। सदा रह कर जोड़, प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया। आन दिन जपत रह दिन राती, सहजे नाम त्याया। नामो नाम मिली वड्याई, नानक नाम मन पावै। कर किरपा लिहो मिलाए, महल हर पावै जियो। नामो नाम मिली वड्याई, नानक नाम मन पावै। कर किरपा लिहो मिलाए, महल हर पावै जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी शांत महला चौथा, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो। सतगुर मिले सुपाए, सहज गुण

दुख दारू सुख रोग मया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत

जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, तब लो प्रमती फिरती बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनाया। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुरु पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गाड़ सोहया राम, काया गाड़ सोहया मेरे प्रभ मोहया। क्यों सास गिरास विसारिया, अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी। हो सतगुर कै बलिहारी, सतगुर आगै सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावै, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावै, सतगुर आगै सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावै, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावै, सुख टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसय गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसोह कुरसोह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह। सिरशाद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दाविसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाद शाह। जिस पर

0: गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे के लाज वस, गोविंद दास तुहार।
1: सगल द्वार को साड के गयो तुहारो द्वार,

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाय, मन आनंद है जियो, सच

नाम बिना नाही को बेली बिखला दे सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बुझा हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सिंयापै साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार शब्द।

अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारे नानक भगत सोहन दर सच सच के व्यापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए साजियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए साजियो सच नाम त्याए साच चवाए गुरमुख शब्द पछाणा दीनानाथ दयाल निरंजना अन दिन नाम वखाणा।

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते

0: सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
1: थोड़ी नजर करी जी अपनी तन तेरी सतगुरु पाया एहो जीओ बहुते जन्म भुलिया का सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जीवन दाता को नहीं सब सुने लोक सपाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच हो।

0: हो करी ना होई। बले हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब शिव सवालियो जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं शूर शब्दं शूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा। आत्मा वासुदेव सै जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला पहला

0: दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतपालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिर नसी अंगरों राज जोग लहना करै।
1: सदा कलिव रहे करण शिष्टाचार दुरम स्पूर जो निवे खवे कस विमल विचार यह तत् जान्यो सर्वगत लख बड़ाणी सहज पाए संचयो किरन मत कल बाणी गुर गम परमान तै पायो सत संतोख गुराज लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लहने पायो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरण बिकंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन।
2: नाम अख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम सो कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रक्यो रव लोए दर्शन परस है गुरु कै अठ सठ मजन होए दर्शन परसिया गुरु कै अठ सठ मजन होए
3: सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै साजन परवा जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै सा

मेहमान तेरी टेक अवर से आण पाबिर थिया प्यार राखन का तुम एक मैं माना।

नानक के बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावा वड़ पागे से काडिया प्यारे संत संगत जना वासो अमृत नाम आराधिया निर्मल मन होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिया प्यारे

शिव जीओ, आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी।

0: न कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब को। सुत क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए, नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़, अखी सुतक वेखना परतरे पर तन रूप। कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाय, नानक हंस आदमी बदे जम पर जाए महला पहला। सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए। खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए, नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिन्ना सूतक नाहे पौड़ी। सतगुर वड कर सलाही है।